ये दुनिया एक मेला है जहाँ इंसान मिलते हैं गरीबों के दुआओं से, मगर भगवान